0: अब सुनते हैं समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः, रक्षा, डिजिटल संपर्कः, ऊर्जा, शिक्षा, जनानां संबंधादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर

0: पाकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मत

0: मतदाता सूची पर सुर्खी दी है। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें तीन सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस नजर

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी। आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
2: और ये मेरी गुड़िया की ना
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
3: चुप चुप बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भाई

0: भी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
3: नमस्ते सर, नमस्ते।
2: भाई मुझे पता चला है, न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
3: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
2: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
3: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
2: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
3: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की,

उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे

0: नहीं, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़ी उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शन और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास सीखे, एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे

हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने

ने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की।

धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वेसालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कल्पा के

वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरवैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका।

0: In detail, Prime Minister Narendra Modi is holding a bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders are reviewing cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the presidential palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremonial welcome. And now, both the leaders are participating in the bilateral talks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashvani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
1: PM Swanidhi Yojana ki labharthiyon mein karib 46% mahilaye hain, yani desh bhar mein lagbhag 35 lakh mahilaye is yojana se judkar apne karobar ko aage badha rahi hain. Ghaziabad ki Babita Sharma ji iska bahut achha udharan hai. Babita ji pooja ki samagri ka ek chota sa stall lagati thi. फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे-धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: Mr. Modi said today the flight of the country's daughter's dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000

0: छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.
1: Mr. Modi spoke to Krishna Seshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatraja.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
0: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं. इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है. नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं. स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने

0: वैश्विक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज़्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे

0: ये दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के

पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किम ज्ञास्यन्ति नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषय सामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम् नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68-70% सम्प्राप्ता प्रायः 25% जनाः अद्यापि विलुप्ताः भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय चतुर्थं विमानं नेपालाय प्रेषितम् अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः अथ वार्ताः विशदीकृत्य भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम् यथि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम् ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान् प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः श्रीमोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरवार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी संतोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति अपितु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है नशा मुक्त युवा ड्रग फ्री इंडिया बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है
0: प्रधानमंत्री न्यवेदयत यत् मादकद्रव्य व्यसनं केवलं एकं जनं न ग्रसते अपितु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादकविरोधी जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादकद्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर की कमी नहीं है मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले
0: प्रधानमंत्री अवदत यत पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति सः अकथयत यत महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत तावती न दृश्यते श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 44% मिताः महिलाः सन्ति

0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अंतरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट इत्यस्ति, येन 80% देशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेष क्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुम्बई नगरस्थेन कृष्णशेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
1: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
0: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70% संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2,500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायां अद्य भारतीय महिला दलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।

0: करने के लिए या किसी भी स्कोर को हम चेज करने के लिए।
1: बिल्कुल। और इस बीच हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर वो हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084 और 1085। इस बीच राकेश, चर्चा चल रही थी पेस डिपार्टमेंट पर, और हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में तो खास करके केवल 5 विकेट निकाले पेसर्स ने, लगातार चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी उसमें, और जिस कारण भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं देखने को मिली, सबसे कम थे 5 विकेट।
2: नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारा तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अनसेटल्ड लगता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मैच, इस मैच से पता चलेगा आपको, क्योंकि जो कैंप लगाया गया, तैयारी की गई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले ये परंपरा थी कि किसी बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज से पहले तैयारी की जाती थी, तो तैयारी के साथ टीम यहाँ पर उतर रही है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कमियाँ रही हैं तेज गेंदबाजी की भी, उसके ऊपर ध्यान दिया गया होगा।
3: बिल्कुल। और प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे, खासकर ग्रुप ए की भी बात करेंगे, उस पर भी निगाहें काफी टिकी हुई हैं, बिकॉज आने वाले मुकाबले तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, और सबसे ज्यादा अगर निगाहें होंगी तो वो पुथा वांग पर होंगी, जिन्होंने 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। तो यस, वो गेंदबाजी की धार क्या थाईलैंड की तरफ से देखने को मिलेगी? लतिका मैम,
0: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से थाईलैंड ने पिछला मैच खेला है और वहाँ उनकी गेंदबाजी हुई है, उनके स्पिनर्स का जो दबदबा रहा है, सिर्फ एक ही मीडियम पेसर को उन्होंने अपनी टीम में रखा, अपनी गेंदबाजी में रखा, और बाकी के ऑफ स्पिनर भी, लेग स्पिनर भी, लेफ्ट आर्म सब वहाँ रहे और विकेट लेने ले पाए उस मैच में। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे बल्लेबाज, जो कि हम कहते हैं कि अगर भारतीय टीम होती है तो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं क्योंकि हमारे पास भी वो बेहतर स्पिन अटैक है, तो ये थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी कि हमारे बल्लेबाज उन स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोर से पेसर अगर आ रहे हैं तो दूसरे छोर से आपको स्पिन अटैक जरूर मिलेगा,
1: और अटैक में विविधता बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रश्नों में भी विविधता के लिए हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं। तो पहले श्रोता जिन्होंने अभी कॉल किया उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार सर
1: जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने भी अभी एम्फसाइज किया, उन्होंने जोर दिया कि बल्लेबाज तो अच्छे हैं, गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा, और लतिका खास करके हम पेस अटैक का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि जिन्होंने कमान संभाल रखी थी बहुत लंबे वक्त तक भारतीय गेंदबाजी की, वो फॉर्म में नहीं नजर आ रही, इंजरी कारण है, खास करके न्यू बॉल के साथ इफेक्टिवनेस सेम नहीं है।
0: देखिए रेणुका की अगर हम बात करें, जब आई थिंक 1 या 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव थी, बहुत अच्छा स्विंग भी चल रहा था, लेकिन WPL के बीच में उन्हें थोड़ा बैक इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर भी रही थी। उसके बाद जब वो कम बैक उन्होंने टीम में किया तो वो पेस हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई, वो एक कहते हैं ना कि वो धार नजर नहीं आई, तो वहां से थोड़ा कंसर्न हुआ कि रन लीक्स ज्यादा करते हैं, 8 या 9 के एवरेज से वो जो है ओवर में रन्स दे रहे हैं, तो वहां एक कंसर्न हो जाता है। क्रांति गोड, जिनसे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी गेंदबाज भी हैं वो, लेकिन वही बात कि आप वहां पर अगर हमारे मीडियम पेसर्स जितने भी देखें तो 8 से 9 रन जो पर ओवर है वो कहीं ना कहीं लीक होते हैं, और T20 के गेम में अगर शुरुआती ओवर्स में आप इस तरीके के रन्स दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जो है आपकी टीम पे आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न, जो मैंने पहले भी कहा, ये एक कंसर्न देखते हैं कि कितना काम करके आई है भारतीय टीम, और हम चाहेंगे कि क्रांति गौड़, रेणुका सिंह है, ये किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे, और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भारतीय टीम इन पर भरोसा दिखा रही है, मैनेजमेंट इन पर भरोसा दिखा रहे हैं, कोचिज, कप्तान, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम की नजरों से।
3: इंपॉर्टेंस काफी है इसकी, और हमारे कॉलर्स की इंपॉर्टेंस भी उतनी दुगनी हो जाती है, खासकर जब ऐसे मैचेस हो। तो एक कॉलर के साथ हम, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, आपका सवाल क्या है सर? जी जी जी

0: जी बिल्कुल सर, सवाल क्या है आपका? जी बिल्कुल, तो राकेश जी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि वो प्रोत्साहन मिले महिलाओं को भी, और भी ज्यादा जो है उड़ान पर आए, लेकिन उड़ान के साथ कहते हैं ना कि देखना है उसकी उड़ान को, तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ी सी नजर हम करेंगे, ज्यादा बदलाव इंडियन टीम में तो नहीं है, लेकिन हाँ थाईलैंड निगाहें जरूर होंगी। राकेश जी
1: नहीं बिल्कुल, देखिए एक जो भी टीमें यहाँ 11 आप बनाते हैं तो पिच के मिजाज को देखकर बताते हैं, और सबको ये लग रहा है कि भाई पिच में जो है स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी, तो इसीलिए दोनों टीमों ने स्पिनर पैक्ड अपनी 11 को रखा है यहाँ पर। और लेकिन जिस तरह से थाईलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो मुझे लगता है कि वो पिच के अंदर जो शुरुआती कुछ मदद होती है तेज गेंदबाजों के लिए, उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहेंगे।
0: राइट, और 120 का हम जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अनिश्चितताओं का ये खेल है, और अनिश्चितताओं की तब्दीली निश्चितताओं में होती है। निश्चित रूप से 120 लग रहा है आपको? थोड़ा सा प्रेडिक्शन सबसे लेना चाहूंगा। लतिका मैम,
2: मुझे लगता है कि पिछला मैच जिस तरीके से इन लोगों ने खेला है, विकेट्स लिए हैं स्पिनर्स ने, तो उसी की वजह से ये टॉस पे इन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है, क्योंकि इनको लगता है कि हम गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, दूसरी टीम को हम कम स्कोर पे रोक पाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की डेप्थ देखी जाए तो 120 से तो ऊपर हो गई होगा।
3: ऑब्वियसली एम्बिशन दिखाती वहाँ पे थाईलैंड की स्टैंड इन कप्तान, और जो भारतीय 11 है यहाँ पर वो शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना ओपन करते हुए, प्रतिका रावल डेब्यू करते हुए, हरमनप्रीत कौर कप्तानी की कमान संभालते हुए, भारतीय फुलमली को वापस से मौका मिला है 11 में, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा स्पिन ऑलराउंडर, प्रेमा रावत हैं लेग स्पिन करते हुए नजर आएंगी वो, एन श्री चरणी, क्रांति गौड और नंदिनी शर्मा। लेकिन क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है राकेश, तो वापस से बल्लेबाजी पर यहां पर अगर हम जोर दें, और फिनिशर्स के तौर पर जिस लेवल का एवोल्यूशन भारत एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा देखने को नहीं मिला है, काफी दारमदार ऋचा घोष पर ही आ जाता है।
1: नहीं बिल्कुल रहेगा, फुलमानी के ऊपर भी है, वो भी बिग हिटर है, और यहाँ पर देखना सबसे बड़ी चीज है कि आपको न केवल ओपन अच्छा करना है, बल्कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं या फिनिशर है, लास्ट ओवर्स में किस तरह से आप लास्ट के 5 ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करते हैं, नए बैटर आपके ना आए उस समय, अगर पहले के लोग लंबी इनिंग खेल रहे हैं, जो अच्छा खेले उसको लंबा टिकना चाहिए यहाँ पर, तो उससे आप बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिलती है।
3: जी बिल्कुल, और हरमनप्रीत के तौर पर भारत के पास एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि दोनों रोल डॉन कर सकती हैं, मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की, और डेथ में जरूरत पड़े तो फिनिशर का रोल भी।
2: देखिए उनको मैं हमेशा से एक इंपैक्ट प्लेयर की तरह देखती हूं, कि जिस तरीके उनके शॉट्स हैं, उनके पास जो बल्लेबाजी करती हैं, जितना दमखम वो अपने शॉट्स में दिखाती हैं, तो मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि संपूर्ण तरीके से बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो। अगर उनको जल्दी मौका मिलता है तो वो अपने टीम के अनुसार शॉट्स लगाती हैं, और जब रनों की गति बढ़ानी होती है तो बड़े बड़े हिट्स भी उनके बल्ले से आते हैं। तो हरमनप्रीत कौर एक ऐसे प्लेयर हैं, कप्तान भी हैं, तो अपफ्रंट होके लीड करने जानती हैं वो।
3: जी बिल्कुल, द कैप्टन नोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शी डस कम विथ इनॉर्मस एक्सपीरियंस इज वेल। अ बिग थैंक्स टू आर एक्सपर्ट्स, थैंक यू टू यू एज वेल गौतम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फर्स्ट बॉल 20। वेल वी हेड स्ट्रेट अवे टू द फर्स्ट इनिंग्स वेयर द टू इंडियन ओपनर्स आर ऑल गियर्ड अप, शेफाली वर्मा एंड स्मृति मंधाना। थाईलैंड आर लुकिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया टू 120। वेल दैट हैपन्स और नॉट, वी डू वेट एंड लिसन।
4: First ball 20.

0: आज मुकाबला खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और ये इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है। भारत अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतर रहा है और इस मुकाबले में टॉस जीता है थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, मेरे साथ अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे पंकज अठावले, स्कोरर हैं रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन हैं ओपी शर्मा। आप तमाम साथियों का, आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान पर पहुंच रही है, और आज भारतीय टीम जिस प्रकार से इस प्लेइंग 11 का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय टीम में आज स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर कप्तान, भारती फूलमली, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा, ये भारत की प्लेइंग 11 है आज के मुकाबले में। प्रतिका रावल आज अपना पदार्पण कर रही हैं भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में, और ये पहला मुकाबला होगा उनका भारत की जानिब से। भारतीय टीम की तरफ से प्रारंभिक जोड़ी स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा मैदान की तरफ पहुंच रही हैं, और इस वक्त समय है अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले का स्वागत करने का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत।
1: Thank you very much. Good evening to all our listeners on Akashwani. What a day it is as Panita Maya for Thailand will be starting the proceedings. Thailand women winning the toss and deciding to bowl first at this wonderful and a very iconic venue, the Dubai International Stadium. The Ring of Fire, Iqbal, is ready, and the Indians will be up there. The most important point here is Thailand, the girls, are giant killers. They have done something big in the past, and this will be a fantastic experience for them as the evening sun sets down on the western horizon in Dubai.
0: Smriti Mandana, 172वां मुकाबला, 4538 रन, और वहीं शिफाली वर्मा 112वां मुकाबला खेल रही हैं, 2901 रन उन्होंने बनाए हैं, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रही है स्मृति मंदाना के साथ साथ शिफाली वर्मा का भी। इस वक्त
2: थाम, खरिया नोटेशी का खेल तो है
3: ब्रो, ही फाट ले लिया है।
2: आई काब ले लिया, फाट ले लिया क्यों? आज जुनिया नोटाना
4: बैंक ब्रांच मध्ये एक्सचेंज करू शकता।
3: वाओ, नवे नोट मिळेल
2: हो, ज्यातून तू आम्हाला पिझ्झा पार्टी देशील।
4: RBI सांगते आहे, स्मार्ट बना, कूल रहा।
5: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी, रात्रीची 8 वाजत आहेत। यानंतर ऐकूया मन की बात कार्यक्रमाच्या मराठी अनुवादाचे पुनः प्रसारण।
6: சில நொடிகளே, நேரம் இப்போது 8 மணி.
0: भारत की पारी का लेग स्टंप पर खराब गेंदबाजी, और ऐसे में इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ लेग स्टंप के बाहर से फ्लिक नुमा स्ट्रोक खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज स्मृति मंदाना। चौके के साथ खाता खोला है उन्होंने, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है माया। यह गेंद एक स्लिप के साथ, और इस बार लेग और मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, ऑन साइड में पुल कर दिया, और गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज, 2 लगातार गेंदों पर 2 चौके, काफी खराब गेंद, हाफ ट्रैकर, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और बड़ी आसानी के साथ स्मृति मंदाना ने इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में निकाल दिया 4 रनों के लिए। भारत का स्कोर इस चौके के साथ 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, और जो स्लिप इस वक्त मौजूद था उसको हटा दिया गया है। एक बार फिर से अब राउंड द विकेट आ रही है माया। ये गेंद, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, पंच किया इस गेंद को कवर क्षेत्र में, लेकिन 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज स्मृति मंदाना के पास। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, पिच नंबर 4 का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार। भारत और थाईलैंड के बीच विमेंस एशिया कप 2026 में

0: backward point and point, two fielders running after it. They will be able to cut that off. A bit of hard work there for the Thailand girls, and that is the end of over number two. India 26 without the loss of any wicket. Iqbal, this is the sort of beginning that was expected from India. And of course, overall, the numbers which have just come to me from OP Sharma, 226 matches that India have played in the T20 format. They have won 123, they have tied one, and in the Asia Cup, they have a very, very good record of 21 victories from 25 matches.
1: जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त वर्चस्व रहा है भारतीय महिला टीम का इस टूर्नामेंट में. लेकिन पिछले जो संस्करण में एक अप्रत्याशित हार मैं कहूंगा भारतीय टीम को मिली थी, फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम हार गई थी, वो एक बड़ी कड़वी याद है भारतीय महिला टीम के साथ और तमाम फैंस के साथ. लेकिन एक नए इरादे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ इस संस्करण में भारतीय टीम मैदान पर उतरी है और ये पहला मुकाबला भारतीय टीम खेल रही है. दो ओवर के बाद 26 भारत का स्कोर, बिना विकेट के नुकसान के माया आ रही है. राउंड द विकेट पहली बॉल, फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के आसपास गेंद को फील्ड किया गया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज स्मृति मंदाना के पास. स्मृति मंदाना 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रही हैं और शिफाली वर्मा ने 5 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं. भारतीय टीम के पास अथाह तजुर्बा है. भारतीय टीम लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर टॉप नहीं तो टॉप टू, टॉप थ्री में हमेशा बने रहने की कोशिश करती है. लेकिन थाईलैंड नहीं है. इस बीच अगली गेंद, फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया हवा में और गेंद मिड ऑफ और बॉलर के बीच में निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. शिफाली वर्मा का ये चौका नंबर 4 और भारत का स्कोर 30 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के. आगे गेंद पिच कराई इसको और पनिश किया. इस तरह की गेंदबाजी से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा पंकज थाईलैंड की टीम का.
0: No doubt about it. And Maya has been trying a lot. Her first few deliveries have always been pretty much, she's getting a bit of movement, but the length is what she needs to control. 30 without the loss of any wicket.
1: Maya ek baar phir se taiyar, round the wicket, agli gend aur is baar dheemi gati ki gend thi. Is gend ko khela offside mein, point se daudte hue jab tak gend ko field kiya jayega. Ek run tezi ke sath pura kiya Smriti Mandana ne aur is single ki madad se Mandana pahunchi 19 par aur Bharat ka score badhta hua 31 run bagair kisi wicket ke nuksan ke. Smriti Mandana ki agar baat karein to विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन मिताली राज के बाद अब स्मृति मंदाना का नाम आ गया है. 10,868 रन ओवरऑल इंटरनेशनल रन्स हैं मिताली राज के, वहीं स्मृति मंदाना बहुत पीछे नहीं है. 10,746 रन उनके हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनका इंतजार कर रही है. फिलहाल अगली गेंद और इस बार फुल पिच डिलीवरी को ड्राइव किया थ्रू द लाइन, लेकिन कवर्स पर गेंद को रोक लिया गया. रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं है शिफाली वर्मा के पास. शेफाली वर्मा ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं, 2 चौके अब तक उनके नाम, और स्मृति मंदाना ने 10 गेंदों पर 19 रन बनाए हैं और 4 चौके अभी तक स्मृति मंदाना ने लगाए हैं. हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई छक्का इस मुकाबले में नहीं लगा है. पांचवीं बॉल के साथ माया ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को शेफाली वर्मा ने उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और ये लीजिए पहला छक्का इस मुकाबले का.
0: Iqbal, you wanted it, they heard you, and the first six of the match, lovely shot, punched it downtown Dubai.
1: Zabardast stroke, power hai kalaiyon mein, Smriti Mandana, balki Shefali Verma ke bottom hand ka bahut hi acha istemal kiya, aur gend ko uchhal diya bowler ke sar ke upar se. Bharat ka score 37 run, is chakke ki madad se, bagair kisi wicket ke nuksan ke. Ek baar phir se, Maya tayyar hain. बेबसी की मुस्कुराहट इस वक्त माया के चेहरे पर नजर आ रही है. उन्हें मालूम है कि किस कद की खिलाड़ियों के साथ उनका सामना हो रहा है. आखिरी बॉल के साथ चली गेंदबाज माया, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार धीमी रफ्तार की फुल पिच डिलीवरी. ऑन साइड में इस गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ मोड़ा, निश्चित तौर पर 2 रन मिलेंगे और इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी मुकम्मल किया. हालांकि सीधा थ्रो स्टंप पर लगा, लेकिन तब तक स्मृति मंदाना क्रीज के अंदर आ चुकी थी और ऐसे में कोई खतरा नहीं होना चाहिए. हालांकि तीसरे अंपायर को इस वक्त ये निर्णय रेफर किया जा रहा है कि क्या स्मृति मंदाना क्रीज के अंदर आ चुकी हैं या फिर उनका जो बल्ला है वो बाहर है. हालांकि जिस तरह से रिएक्शन है उससे लगता है कि शायद स्मृति मंदाना अंदर. ओ माय गुडनेस, स्मृति मंदाना का बल्ला बाहर.

0: स्मृति मंदाना का बल्ला बाहर है और पंकज एक अप्रत्याशित विकेट मिल रहा है थाईलैंड को यहां पर.
1: अनबिलीवेबल, अ डायरेक्ट थ्रो राइट फ्रॉम द डीप. Caught Smriti Mandhana napping for a moment and she is run out. Apisara was there in the deep and what a throw right on the furniture at the non-strikers end. And India lose their first wicket, as you mentioned, in a very, very unfortunate manner. But what a turnaround. This is what luck is all about in this game of T20 cricket. India lose their first wicket in the form of Smriti Mandhana run out.
0: दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट इस वक्त भारत की तरफ से. स्मृति मंदाना जो कि बहुत जबरदस्त ओपनिंग बैटर हैं और बड़ी अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं. जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओवरऑल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका नाम अब दूसरे नंबर पर आ गया है मिताली राज के बाद. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो 10 गेंदों पर 19 रन बना करके रन आउट हुई हैं दूसरा रन लेने की कोशिश में. हालांकि पर्याप्त समय था पंकज.

0: बैटर हैं और बड़ी अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओवरऑल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका नाम अब दूसरे नंबर पर आ गया है मिताली राज के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो 10 गेंदों पर 19 रन बना करके रन आउट हुई हैं दूसरा रन लेने की कोशिश में। हालांकि पर्याप्त समय था पंकज, लेकिन न जाने किस तरह की वहां पर समझबूझ थी ये समझ नहीं आई। नई बल्लेबाज मैदान पर प्रतिका रावल जो कि अपना डेब्यू कर रही हैं।
1: Yes, 3 overs, India 38 for 1, and Pratika has come at a very, very interesting moment. Oh, good ball there by Tripatcha. The first ball, left arm round the wicket, very slow through the air. In fact, just curling into Pratika. And what just happened was when, Shefali got that shot, Smithy took the first run very quickly, and she sort of just slowed down and sort of took a bit of a U-turn kind of a thing while returning, and that is where she kind of lost those couple of yards, and unfortunately for her, the throw was a direct hit. Small, small things in cricket make such a huge difference, and Smriti Mandhana is a tall girl, no doubt about it, and her lunge, her reach is also pretty good, but extremely unfortunate. But Thailand will be very, very happy. Next ball slightly short. Pratika goes on the back foot and almost drags it towards wide-ish long on to open her account. But 39 for 1. And Iqbal, Shefali and Smriti were going at really a very, very good pace. And in fact, the ball was slow. Shefali took off very slow. First run from Smriti was very, very quick.
0: बिल्कुल, और ऐसा लगा भी कि दूसरा रन से स्मृति मंदाना ही चाह रही थी। इस बीच अगली गेंद, और इस गेंद को डिफेंड किया बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। और जब आप खुद दूसरे रन को इनिशिएट कर रही हैं, इसके बाद आप पीछे रह जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये बड़ी गलत बात नजर आई। और बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो उन्होंने स्ट्रेट न दौड़ करके थोड़ा उन्होंने दूर से ग्राउंड को कवर किया, और साथ ही साथ थोड़ी स्लो भी नजर आई हैं। इस बीच अगली गेंद, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया, एक टप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन।
1: Oh, what a shot. Shefali says, I will continue from where I've stopped. And what a lovely shot that was. And Tripatcha is trying to kind of lure Shefali into a wrong shot. But waiting for that ball, letting that ball come in. And then making room for herself and then driving it over the covers. Beautiful shot there by Shefali. And India will expect her to really continue till the end. And that's the most important point. Both your openers were playing so well. But at one end, Shefali will have to continue with the onslaught. There's a shot, third man, point, backward point, cover, mid-off. That's the fielding on the offside. There's a shot, fine length. There's a deep backward square length. And now, in fact, Tripatcha has got the long on in, and she has sent the fielder at mid-off to long off. So they're trying to kind of create some doubts in the mind of Shefali. She goes in the same direction. You keep a fielder there. It doesn't matter. She goes over the covers. Shefali gets another boundary. What a shot! What did she have for lunch today, Iqbal? 4 overs, 47 for run, India.
0: जबरदस्त शुरुआत की है भारत ने, और शेफाली वर्मा इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती हैं, आती हैं, और इसके बाद वो क्या कुछ कर जाती हैं, ये हमारे और आपके सामने है, उनके रिकॉर्ड हमने देखे हैं। और साथ ही साथ जो विश्व कप था, उसमें जिस तरीके से इनको अंतिम चरण में बुलाया गया था, टीम में इंजरी के कारण ये आई थी, और इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो प्रतिका रावल की जगह पर ही इनको भारतीय टीम में शामिल किया गया था। और वो जो नॉकआउट्स मुकाबले थे, उसमें क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा था शेफाली वर्मा का। अमूमन देखें, इस तरह के जो मौके होते हैं, खिलाड़ी का करियर चेंज कर देते हैं। विश्व कप की टीम में शेफाली नहीं थी, लेकिन आती हैं और वो गजब ढा जाती हैं।
1: No doubt about it. And Pratika has come into the team because Jemima Rodrigues is not available because of injury. And this is going to be a good point here. Sunidha now is coming into the attack. 74 matches for her. A pretty good off-spinner, Sunidha. And she will be expected to create something. Thailand will be happy. You are not getting wickets. Let them come through runouts or some other means. But keep on getting wickets.
0: Sunidha, new over ke saath, pehli gain flighted. And this pehli gain ko Pratika Rawal ne uchhal diya. Extra cover ke upar se. Aur ye laga chhakka. प्रतिका रावल शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। आसान नहीं होता पंकज एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारना, और प्रतिका रावल ने कहा क्या बात है, मैं आज डेब्यू कर रही हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उठाकर देखिए, मैंने बहुत रन बनाए हैं। और आज अपने डेब्यू मुकाबले में महज चौथी गेंद पर एक शानदार

0: लगातार छक्का लगाया, भारत का स्कोर 53। इस बीच अगली गेंद और इस बार प्रतिका ने इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक रन दौड़ करके पूरा कर रही हैं और इस एक रन के साथ प्रतिका पहुंच गई हैं 8 पर और भारत का स्कोर 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर पारी का चल रहा है। प्रतिका रावल का टेस्ट क्रिकेट में एवरेज भारत के लिए 40 का है, बहुत ही जबरदस्त इनका रिकॉर्ड है और वनडे क्रिकेट में तो खैर कमाल ही किया है इन्होंने, 47-48 की एवरेज रखती हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। और ऐसे में अब T20 की बारी है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रूम बनाकर इस गेंद को कट किया शेफाली ने, लेकिन पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, दायरे के अंदर, गेंद को रोका गया, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं है। प्रतिका रावल जिस तरह की खिलाड़ी हैं, बहुत कॉपी बुक स्टाइल की खिलाड़ी हैं, बहुत स्लैम बैंग क्रिकेट नहीं खेलती हैं, लेकिन T20 है और T20 में देखते हैं किस प्रकार का उनका बल्ला चलता है। अगली गेंद और इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, लेग स्टंप पर घुमा दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। शेफाली वर्मा इस चौके की मदद से पहुंची है 31 पर, यह उनका पांचवां चौका है और भारत का स्कोर 58 रन एक विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ एलन डिलीवरी, खराब गेंद लेग स्टंप के ऊपर, ऑफ ब्रेक गेंदबाज की ये गेंद बहुत ही खराब कही जाएगी और ऐसे में बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को मोड़ा 4 रनों के लिए। पांचवा ओवर चलता हुआ, पांचवी बॉल के साथ तैयार है गेंदबाज सुनीदा, ये गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में घुमाया है मिड विकेट के सर के ऊपर से, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन से ज्यादा इस मरतबा नहीं मिलेगा शेफाली को। शेफाली इस सिंगल की मदद से पहुंची है 32 पर और भारत का स्कोर 59 रन एक विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार भारत की 12.21 रन प्रति ओवर, क्या शानदार रन रेट रहा है भारत का। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ऑलमोस्ट रिटर्न कैच दे दिया था, बैकफुट पर खेला था प्रतिका ने, लेकिन किस्मत वाली रही प्रतिका रावल की, फील्डर सुनीदा के ठीक सामने गेंद टप्पा खाई और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं बल्लेबाज प्रतिका रावल और ऐसे में ये ओवर समाप्त हुआ। पांचवा, पांच ओवर्स के बाद भारत का स्कोर है 59 रन एक विकेट के नुकसान पर। शेफाली 32 पर और प्रतिका रावल 8 रन बनाकर खेल रही हैं और पंकज जिस तरह का रन रेट है भारतीय टीम का, निश्चित तौर पर पावर प्ले का इसमें कहने की जरूरत नहीं है, भारत ने भरपूर लाभ उठाया है।
1: Yes, no doubt about it, Iqbal. And the point here is that if you talk about Thailand, what they're doing is they're being consistent and they're getting along with their overs very, very quickly. That's their style. And Onicha Kamchompu is now into the attack, 153 wickets for her in her career. She is the off-spinner as the first ball punched towards mid-wicket by Shefali. Now, this is going to be an interesting time because India are going at about 11.5 runs per over and Thailand are going quickly through their overs and their exuberance in the fielding, even though they're getting hit, their exuberance is really very, very exciting. And that is what you'll have to do when you're playing a big team. Two dot balls to begin with, Onicha with her over. This is the most economical over till now. The first deliveries have been dot ball and Shefali is playing on 32 of 16 deliveries. India 59 for the loss of a wicket. Sixth over in progress. That means this is the last over of the power play. Onicha bowls slightly slow, going on the back foot, nicely cutting it through, shot third man. Good fielding there by Maya Panita, the youngster. Dives, slides and stops the ball, just a single. And the kind of improvement that Thailand have made over the years, in the last 4-5 years, has been really phenomenal. That's really very good advertisement for the game of women's cricket. Indonesia are playing in this particular tournament, Hong Kong, UAE, that's really very good to see. Next ball coming down the track. Pratika goes for that big shot. It's in the air, safe, downtown Dubai. 4 runs there for Pratika and only 5 runs have come in this over from Onicha. That means India are feeling not just the pressure but the need to constantly get the runs going. Good to see Pratika using her feet, coming down the track and hitting that ball very, very nicely. So India moving quickly towards a very big score. They're 64 for the loss of a wicket. Pratika right now on strike, she's batting on 12. This time waiting for that ball, couldn't connect it well, straight to the fielder at backward point. The overall development of women's cricket, especially in Southeast Asia, and the kind of teams that have come, Thailand have had some big victories over Sri Lanka, over Pakistan in the last few years. Now they are up here. So the improvement is very evident and that's good for the game of women's cricket. Last ball of the over. Coming down the track, this time goes on the onside.

0: I didn't connect it well. There was a fielder, Sunida, who got that run out of Smriti Mandana earlier on in the innings. Six overs have been bowled. India 65 for the loss of a wicket. Pratika batting on 13. Shefali is batting on 33. And Iqbal, India, of course, would be looking at this particular match from the perspective of a very big victory, because every time there's a multi-team format, you need to always take care of your net run rate. It's always better to have a good net run rate right from the first match. And with teams like Indonesia, Thailand, Hong Kong, India have a good opportunity here. Now, the point is the middle order will have to really kind of exploit the situation instead of kind of getting a bit more overexcited.
1: बिल्कुल सही बात है पंकज. और क्योंकि भारत जिस ग्रुप में है, ग्रुप ए में, उसमें थाईलैंड, पाकिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं, तो दो कमज़ोर टीमें नज़र आती हैं. भारत पाकिस्तान के आगे जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी भारत अपने आप को और बेहतर तरीके से लेकर जाना चाहेगा सेमीफाइनल का. जहाँ तक प्रश्न है, नए ओवर की शुरुआत सुनीदा ने की है. पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद के साथ तैयार हैं गेंदबाज सुनीदा. सामने है बल्लेबाज प्रतीका रावल. ये गेंद प्रतीका के लिए, और इस बार प्रतीका ने इस गेंद को रूम बनाकर कट किया. पॉइंट से गेंद रुकी नहीं, आउटफील्ड अच्छा खासा तेज नजर आया है. हालांकि बहुत स्लो हो गई ये गेंद, डाइव लगाई नहीं रोक पाई और गेंद सीमा रेखा से जा टकराई चार रन के लिए. बहुत अच्छी कोशिश फील्डर के द्वारा, पूरी तरह से अपने आप को झोंके रखा अंतिम समय तक, लेकिन डाइव अंतिम समय पर उन्होंने लगाई. गेंद हाथ में आ भी गई, लेकिन हाथ के नीचे से टकरा करके बाउंड्री लाइन से जा भिड़ी गेंद, और ऐसे में ये चौका मिल गया बल्लेबाज प्रतीका रावल को. इस चौके के साथ प्रतीका पहुंची है 13 पर. फील्डर को थोड़ी चोट लगी है वहां, और इस वक्त वो दर्द से कराहती हुई नजर आ रही हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये 20वां T20 मैच खेला जा रहा है, ये वुमेन्स क्रिकेट का. ये जानकारी दी है हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा ने हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ. भारत का स्कोर इस वक्त 69 रन है एक विकेट के नुकसान पर. विकेट गिरा है स्मृति मंदाना का, जो कि रन आउट हुई है. तो मैं बात कर रहा था ग्रुप्स का. ग्रुप ए में भारत है, थाईलैंड, पाकिस्तान और हांगकांग. वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई की टीमें ग्रुप बी में नजर आ रही हैं. तो निश्चित तौर पर ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की दावेदारी बेहतर नजर आती है. वहीं उधर ग्रुप बी में बांग्लादेश और श्रीलंका की दावेदारी बेहतर नजर आती है. लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. कभी भी कहीं भी बाजी पलट सकती है. और ये जो नई टीमें हैं, ये जो थाईलैंड, हांगकांग, यूएई जैसी टीमें हैं, ये अपना छाप छोड़ने के लिए इस टूर्नामेंट में आई हैं. फिलहाल इस वक्त खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है. अब गेंदबाजी करने के लिए सुनीदा तैयार हैं. सामने है प्रतीका रावल. 17 रन बनाए हैं 11 बॉलों पर. अगली गेंद, और इस बार प्रतीका ने इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट क्षेत्र में. हालांकि पीछे फील्डर मौजूद, गेंद को रोक लिया गया और इस बीच दौड़ करके एक रन पूरा किया प्रतीका रावल ने. और इस एक रन की मदद से 18 पर पहुंची हैं प्रतीका, और भारत का स्कोर 70 रन एक विकेट के नुकसान पर. आज प्रतीका रावल को भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डेब्यू कैप थमाई, इंटरनेशनल T20 कैप थमाई. और इस बीच अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया शेफाली वर्मा ने. गेंद को उठा दिया वाइड लॉन्ग ऑन पर और गेंद जाकर गिरी है स्टैंड्स में. 6 रन शेफाली वर्मा का दूसरा छक्का, और भारत का स्कोर 76 रन एक विकेट के नुकसान पर. सुनीदा की ये फ्लाइटेड गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंची और एक बेहतरीन पावरफुल हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए. सीधे स्टैंड पर जाकर गेंद गिरी है, भारत 76 एक विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार बैक ऑफ लाइन डिलीवरी. ऑन साइड में इस गेंद को घुमाया, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में. डाइव लगाई फील्डर ने, नहीं रोक पाई और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन शेफाली वर्मा बहुत तेजी के साथ अब अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं. 19 गेंदों पर 43 रन बना लिए हैं शेफाली वर्मा ने, और भारत का स्कोर देखते ही देखते 6.5 ओवर में 80 रन एक विकेट के नुकसान पर. सुनीदा थोड़ी

0: छोटी गेंद कर बैठी थी और उसका पूरा लाभ उठाया शेफाली वर्मा ने। सुनीदा अंतिम ओवर अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं, ये उनका दूसरा ओवर है। अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन लेंथ छोटी कर दी सुनीदा ने और विवश होकर इस गेंद को मोड़ा। फाइन लेग 25 गज के दायरे के अंदर है, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं बना आखिरी बॉल पर। और इसी के साथ 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय वुमेन्स टीम का स्कोर है 80 एक विकेट के नुकसान पर। प्रतिका रावल खेल रही है 18 पर और शेफाली वर्मा 43 रन बनाकर खेल रही हैं महज 20 गेंदों पर, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। स्ट्राइक रेट उनका 215 का चल रहा है और मौजूदा रनगति लगभग 11.5 रन प्रति ओवर भारत का।
1: सो इकबाल, इंडिया वोंट रियली बी अनहैप्पी आफ्टर दैट रन आउट ऑफ स्मृति मंदाना बिकॉज प्रतिका एंड शेफाली हैव एक्चुअली कंटिन्यूड फ्रॉम वेयर स्मृति मंदाना हैड लेफ्ट। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट द रन रेट 11.5 रन पर ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग नंबर कमिंग अप हियर, प्रतिका इज बैटिंग ऑन 18 राइट नाउ, इज द हाईएस्ट स्कोर ऑन डेब्यू ओवरऑल in the Asia Cup T20. Very interesting. Onicha now comes for the next over. Pratika batting on 18 of 13 deliveries. And you mentioned about her copybook style. You saw earlier Shefali hitting the ball through onside, through the air. But coming down the track, Pratika tries to play it along the carpet. So these are different styles of players. As Onicha bowls this time, swept high in the air by... This couldn't be a wicket, though. Just falling short of the fielder at deep backward square leg. Pratika swept it. Top edge, the ball was in the air for quite some time. The fielder there, Nanapatha, was the fielder. She tried really very hard, but the ball kept on dipping onto the Thailand player, Nanapath, and just falling short. A very, very aggressive attempt there by the fielder. Thailand are giving it all. They want a wicket at any cost this time, driven nicely through the covers, straight to the fielder at extra cover. Pratika batting on 20. India 82 for the loss of a wicket. Iqbal, what's good to see is that the Thailand players are not able to control the runs, but they're not giving up. Their fielding has been fantastic and their overall body language has been very, very positive, which is really very good. This time playing across the line, nicely clipped it. There's a fielder at deep mid-wicket, Sunidha. Pratika will just get a single. She wanted to kind of get that gap between mid-wicket and deep backward square leg and played that across the line shot, but she will get a single. This is an interesting over. India, going at 11.5 runs per over, have got only 3 runs from the last 4 deliveries. Onicha seems to be the bowler who has got India under control. Good ball, lovely turn. Very slow through the air on the off stump. The ball gripping the surface, turning and sort of cramping Shefali for space completely. And Shefali also gave enough respect to that ball. We have not seen so much of turn till now. Maybe a bit of finger and maybe a bit of wrist there by Onicha. This is very good bowling from the Thailand girls. Coming down the track, anticipated that really very well, bowled a slower one, forced Shefali to play it back to Onicha. Only 3 runs coming from this over, so the 8th over has turned out to be the most economical for Thailand till now. And is this the turning point of the match for Thailand? Because Thailand, when they won the toss, their captain said they want to kind of keep it about 120-130 for India. India already have got a very, very good score in the first 8 overs. Can Thailand just grab that, you know, sort of get them into shackles and keep the Indian scoring slightly low in the next few overs and then see what happens?
0: और पंकज, जैसे ही आपने बताया कि उनके कप्तान ने कहा कि भारत को 120-130 के अंदर हम रोकना चाहेंगे, दरअसल उनको भी पता है कि भारत को 120 और 130 के अंदर नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो भारत जैसी मजबूत टीम के सामने खड़ी होकर के कह रही हैं कि हम भारत को 120-130 में रोकना चाह रहे हैं। और वैसे बात अलग है कि 8 ओवर में ही भारत ने 83 बना लिए हैं। फिलहाल लाउमी आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और वो गेंदबाजी करेंगी प्रतिका रावल को। पहली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के बाहर, टर्न हुई गेंद, विद द टर्न इस गेंद को खेला ऑफ साइड में, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका प्रतिका रावल के पास और इस 1 रन की मदद से प्रतिका पहुंच गई हैं 22 पर और भारत का स्कोर 84 रन एक विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार का रन रेट चल रहा है भारतीय टीम का 10.29, अगर हम इसी को मान के चलें कि यही सिलसिला आने वाले ओवर्स में भी जारी रहता है तो आसानी के साथ भारत 200 रन को पार कर लेगा। फिलहाल एक बार फिर से तैयार हो रही हैं गेंदबाज लाउमी और सामना करने के लिए तैयार हैं अब शेफाली वर्मा। हालांकि क्योंकि अब पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो गए हैं तो थोड़ा सा

0: थोड़ी सी राहत थाईलैंड की गेंदबाजों को भी है। अगली गेंद और इस बार लेग ब्रेक गेंद की, गेंदबाज की ये गेंद टर्न हुई बाहर की तरफ, खेला इस गेंद को पॉइंट पर, रन बनाने का मौका नहीं।
1: Yes, in fact, what has happened with the Thailand team is that the first 3-4 overs, they were slightly kind of under pressure because of the hard hitting of Shruti Mandhana and Shefali. But then they have come back because the fielding placement seems to be right now in the last few overs. Lovely fly. The leg spinner Laumi is definitely making Shefali think a bit. And both Shefali and Pratika, of course, utilized the power play really very well. But Iqbal, now these middle overs are going to be very, very crucial.
0: बिल्कुल सही बात है, और भारतीय टीम को इन ओवर्स में रनों का जो सिलसिला है उसको बनाए रखना होगा। फिलहाल एक बार फिर से तैयार हैं लाउमी, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शॉट गेंद, इस बार उछाल दिया इस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। शेफाली वर्मा ठीक बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुई, वरना ये कैच भी हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी कि भारत 6 रन प्राप्त करता हुआ। 49 पर हैं शेफाली वर्मा, एक रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चली गेंदबाज, और इस बार शेफाली ने इस गेंद को घूमकर खेला ऑन साइड में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक रन इत्मीनान के साथ पूरा किया, और इसी के साथ शेफाली वर्मा का अर्धशतक पूरा। शेफाली वर्मा 26 गेंदों पर 50 रन, 6 चौके और 3 छक्के, 192 की स्ट्राइक रेट। और हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा ने हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ जानकारी दी है कि ये 19वां अर्धशतक है शेफाली वर्मा का 112वें मुकाबले में। अगली गेंद और इस बार नीची रही, गुगली टर्न हुई, बोल्ड हो गई प्रतिका रावल।
1: Look at the smiles on the face of the Thailand girls. They have got a big, big wicket. The ball right on the stumps, on the middle stump. It kept a bit low. Pratika Rawal was pushed on the back foot and the ball just skid after pitching. And this is a lucky break there for Thailand. And look at Sulipon Laumi. She was ecstatic. And she has got a big, big wicket when we were just celebrating the half century of Shefali Verma at the other end. Pratika Rawal is out on 22. India losing their second wicket at the score of 91. And India, of course, have done a very, very good job. But Thailand, the way they're kind of coming back again and again at crucial moments is something very, very impressive. Mind you, young girls, new team. We won't call them a weak team. We will call them a lesser known team, because these teams in a multi-team format always create all sorts of problems. And also, for Team India, this is a completely different experience as long as they're playing the big teams like the Australias and the New Zealand and the South Africas. But Harmanpreet Kaur now in the middle, in the 10th over of this particular match. It's a big ground, Iqbal. India have done well, but the way, in fact, the Thailand girls and the fielders have persisted with and persevered is something very important, as Harmanpreet Kaur would be. She is a big hitter, no doubt about it, but will she take the risk at this particular point? Mind you, we don't have Jemima Rodericks at number 3. Pratika Rawal did a good job, had a very good start, couldn't really continue, but the ball kept low from this particular end, and that is going to be very crucial the match progresses.
2: She's been bowling really very well. This time played in the air and just short of that fielder at short extra cover. It was uppishly played by Shefali, and that was very close, a boundary there nevertheless. But things are suddenly changing, and if Thailand are lucky, they might just run through the Indian middle order.
3: बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी थाईलैंड की गेंदबाज कर रही हैं, और ये किस्मत अच्छी है शेफाली वर्मा की कि इस बार उनका कैच एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा नहीं गया, अन्यथा वो आउट हो जाती। फिलहाल एक बार फिर से ओनिचा तैयार, अगली गेंद फ्लाइटेड, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे गेंद जा रही है, सिंगल मिला। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब हो गया है 96 दो विकेट के नुकसान पर। शेफाली वर्मा ने ये 19वां अर्धशतक पूरा किया है, और उन्होंने अपनी कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा। हरमनप्रीत कौर के 18 अर्धशतक हैं T20 क्रिकेट में, और सबसे ज़्यादा अर्धशतक जो हैं वो स्मृति मंदाना के हैं, 35 अर्धशतक उन्होंने T20 क्रिकेट में लगाए हैं।
2: Harmanpreet on strike this time. Oh, bit of bounce there. Now, in fact, the end

0: from which Onichha's bowling, the ball is bouncing a bit more after pitching. But from the other end, when Lavi got the wicket, so this dual bounce on either side is going to be interesting. Harmanpreet as captain will have to keep a watch on the ends so that then she can use her bowlers later on with proper effect. They're trying to go for an expansive cover drive straight to the fielder at extra cover. India 96 for the loss of two wickets. India have done well, about 10 runs per over, pretty good, no doubt about it. But when you talk about a big victory, Iqbal, you need to get 200, 220 plus in fact against a team like Thailand. But cricket is a funny game. Onichha bowls. Oh, a bit of bounce, trying to cut that ball, not coming on the bat completely. Harman will get her run, her first run of the innings, and in fact Shefali Verma has been playing really very well. Seven hits to the boundary, three huge sixers, and she has kept one end really scrolling fast, very very good. But the fact that Onichha, when she bowls, she has a slight sling arm action, and this time going down on one knee, a cross batted straight down the ground over the bowler, a very innovative stroke that was for four runs. She could have hit it anywhere from point to long on. What she chose was a cross batted straight shot over the bowler. I guess I have described it properly.
1: बिल्कुल, और सबसे सुरक्षित स्ट्रोक भी है ये. ठीक, गेंदबाज के पीछे कोई फील्डर नहीं रहता अमूमन, और ऐसे में वहां पर एक सेफ जोन उन्होंने चुना. और जैसा हम कह रहे हैं कि शेफाली वर्मा बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी हैं, वीरेंद्र सहवाग से इंस्पायर नजर आती हैं, और आज बल्लेबाजी भी कुछ वैसी ही कर रही हैं वो. एक छोर से वो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन गेंदबाजी कर रहा है, किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, गेंदें क्या हरकत कर रही हैं. शेफाली वर्मा के लिए ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रख रही हैं, और उन्होंने 29 गेंदों पर 59 रनों की एक बहुत ही जोरदार पारी खेली है. 8 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं इस मुकाबले में. 10 ओवर का खेल खत्म हुआ है, और 10 ओवरों में भारत ने 101 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर. आज इस मुकाबले में जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुनना शुरू किया, उनको बता दें कि टॉस जीता है आज थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले भारत को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया. भारत की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की, और दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन आगाज दिया भारतीय टीम को, और भारत ने 38 रन पर पहला विकेट गंवाया, और ये 38 रन भारत ने मात्र 3 ओवर में बनाए थे. स्मृति मंदाना अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश तरीके से, वो 19 रन बना करके रन आउट हुई. 10 गेंदों पर 4 चौके लगाए थे उन्होंने. इसके बाद डेब्यूटेंट प्रतीका रावल आई बैटिंग करने के लिए. प्रतीका रावल ने 22 रन बनाए 18 गेंदों पर, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया. और फिलहाल शेफाली वर्मा 59 पर, और हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रही हैं. गेंदबाजी का जिक्र करें तो माया ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 25 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं. थिपाचा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 22 रन दिए हैं, और कोई कामयाबी उनको भी प्राप्त नहीं हुई है. सुनीता ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 27 रन उन्होंने खर्च किए हैं, और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है. ओनिचा ने 3 ओवर डाले हैं, और इन 3 ओवरों में ओनिचा ने 19 रन दिए हैं, और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है. लेकिन सबसे किफायती गेंदबाजी ओनिचा ने की है, 3 ओवर 19 रन, और कोई कामयाबी नहीं. 6.30 का उनका इकोनॉमी है. और इसके अलावा लाउमी ने आते ही पहले ही ओवर में थाईलैंड को विकेट दिलाया, उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 8 रन दिए हैं, और 1 सफलता उनको प्राप्त हुई है. पहला विकेट भारत का 38 पर गिरा, दूसरा विकेट 91 पर गिरा, और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ शेफाली वर्मा मैदान पर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रही हैं. जिस तरीके से शेफाली वर्मा ने बैटिंग की है, उनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा हरमनप्रीत कौर को, पंकज, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में लेकर के ऑफ लेट काफी चर्चा में रही है और काफी स्क्रूटनी में रही है कि क्या हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट को सूट करती है. ये बात और है कि उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता.
0: No doubt about it, as Laumi starts a new over, the 11th of the innings, a cheeky sweep from outside the off stump by Harmanpreet. She'll get a couple of runs as the ball trickles over towards fine leg. And it's a very important point that you made about Harmanpreet. And the fact remains that every player goes

0: through different phases in his or her life. And Harmanpreet has a good opportunity to actually play in the shadow of Shefali and kind of get back to what she is good at. But the Thailand girls would be looking forward to exploiting this particular situation, and instead of targeting Shefali, they would try and target Harmanpreet and get wickets at one end. 103 for the loss of 2 wickets.
1: एक बार फिर से लौमी लेग ब्रेक गेंदबाज अगली गेंद और इस बार टर्न के सहारे इस गेंद को कट किया, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है हरमनप्रीत कौर के पास। हरमनप्रीत कौर इस वक्त एक रन बनाकर खेल रही हैं और उनके साथ 59 पर शेफाली वर्मा बैटिंग कर रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से तैयार गेंदबाज लौमी, सामने है हरमनप्रीत कौर। ये गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, लेकिन ठीक पहले फील्डर के गेंद टप्पा खाई और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर।
0: You mentioned it right. She's not really getting the shots or the timing really very well. She wanted to go for that expansive drive over the covers, and there was Onicha who was there at long off, and Laumi would be very, very devastated. This would have been a big, big wicket.
1: Harmanpreet Kaur ko single mila, lekin ek jeevandan bhi aap keh sakte hain. Char run aur chhe gendon par ye char run unhone banaye hain. फिलहाल लौमी एक बार फिर से चली ये गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट पर शेफाली ने। खुद गेंदबाज गई हैं फील्ड करने के लिए, एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर पारी का चल रहा है। लौमी ने अपने पहले ओवर में 8 रन देकर के एक विकेट लिया। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हैं लौमी ने और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर सामना करने के लिए तैयार। लेग ब्रेक गेंदबाज की अगली गेंद शॉर्ट गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में सिर्फ पुश।
2: ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ
3: ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣೋಣ,
2: ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ.
4: ಓದನ್ನು ಕಲಿತು ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.
2: ಸಮಯ 8:45 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
5: ನಮಸ್ಕಾರ, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया. श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे. प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा. नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की. मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई. अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की. और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने. अब समाचार विस्तार से. भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है. उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है. दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई. ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई. भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है. उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद

0: वाकई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल

0: हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है।

0: भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिली में और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ

0: आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said, maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
0: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल आल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
0: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
1: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote the Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies. India has pledged $1 million for afforestation in the Aral Sea region. The two sides also agreed on an arrangement allowing Indian UPI apps to scan Uzbekistan's national UZ QR codes for merchant payments. A letter of intent was also signed for the restoration and conservation of the Buddhist sites.
2: India losing their 6th wicket in the form of Deepthi as a run out.
3: और पंकज अभी भी इस मुकाबले में 4 ओवर और 4 गेंदें बची हैं। ये 6 विकेट भारत ने गंवा दिए हैं। अब एक खतरा ये भी है कि भारत कहीं ऑल आउट ना हो जाए। जिस तरह की गेंदबाजी और खास तौर पर फील्डिंग ने जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है उनकी गेंदबाजी को, ये लाजवाब क्रिकेट कही जाएगी। पूरी तरह से अचंभित कर दिया है अपने प्रदर्शन से थाईलैंड की खिलाड़ियों ने।
4: इनफैक्ट बाल कपल ऑफ थिंग्स, देयर वाज नो नीड फॉर सच काइंड ऑफ अ रिस्की रन, और इज इट द केस दैट बोथ द बैटर्स वर अ बिट नर्वस एंड दे आर काइंड ऑफ नॉट रियली एबल टू हैंडल द प्रेशर। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज, लेट्स टेक यू बैक टू वॉट द थाईलैंड कैप्टन had said at toss. 120 was the par figure for them, and they are coming very close. Even a plus minus 20 odd run will go to show that their confidence and their strategic brilliance was really very good. Nevertheless, India will have to work hard. Prema is now at the other end. Bharti picks up a single by pushing that ball on the onside near the square leg region, and Prema is now going to be on strike. 128 for 6. Can you believe it? 91 in the first 9 overs, and now you have Prema Rawat batting at number 8 for India. Unbelievable. 16th over is in progress. Hot conditions in Dubai, but right now the Thailand bowling and fielding is hot as a Thai curry. This time Prema gets the first ball, cuts it hard, top edge over the short third man fielder, and the ball trickles into the boundary. She opens her account with a boundary, but not very much in control of the chotik ball.
3: बिल्कुल सही बात है, बहुत रिस्की शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश किया था और ठीक फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकली, जंप किया था आसमान की तरफ, लेकिन किस्मत अच्छी कि गेंद हाथों के ऊपर से निकल गई। चौका मिला भारत को, भारत 132 6 विकेट के नुकसान।
4: इनफैक्ट व्हाट्स हैपनिंग हियर इज दैट द थाईलैंड गर्ल्स आर टेकिंग इट

0: मैं सोचने पर विवश किया है कि आखिर किस तरह से उन्होंने गलतियां की हैं और खासतौर पर जो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स बीच में आए हैं, खासतौर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और दो रनआउट्स जो थाईलैंड ने एग्जीक्यूट किए, उन दो रनआउट्स का भी बड़ा अहम योगदान है और दोनों रनआउट डायरेक्ट हिट के जरिए उन्होंने आउट किए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, कमाल की वापसी, पहले 10 ओवर भारत के नाम, लेकिन अगले 10 ओवर में जो वापसी की है थाईलैंड ने वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है, यकीन के परे लगती है कि भारत जैसी टीम के खिलाफ थाईलैंड जैसी टीम इस तरह की वापसी करेगी। माया 19वां ओवर लेकर के आ रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली बॉल, इस पहली बॉल को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन आउट का वहां पर चांस है लेकिन सीधा थ्रो इस बार लगा नहीं और ऐसे में एक रन जोखिमपूर्ण ही सही भारत के खाते में आता हुआ।
1: इट बार थिंग्स आर टर्निंग आउट एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्फिडेंस गोज अप व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। थाईलैंड डेफिनेटली हैज गॉट अ बिट ऑफ लक टुडे एंड बिट ऑफ यस यस नो नो काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इज द लास्ट पेयर इन द मिडल, बट इट दैट इज व्हाट टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस shorter format of this wonderful game.
0: ये 19वां ओवर चल रहा है और ये पहला मौका है जब कोई डायरेक्ट थ्रो मिस किया है थाईलैंड ने। इस ओवर के अगली बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। पिछली 30 गेंदों पर 25 रन भारत ने बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं। राउंड द विकेट आती हुई इस बार अगली गेंद, फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, स्वीपर कवर पर, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का अब हो गया है 142 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी मैदान पर है भारत की तरफ से और इस अंतिम जोड़ी से उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम ये 20 ओवर्स खेल जाएं, भारत ऑल आउट ना हो, वरना ये अपने आप में बड़ी ऐसी बात हो जाएगी जहां आप कह सकते हैं कि जग हंसाई वाली बात। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फुल पिच थी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, एक रन आसानी के साथ लिया बल्लेबाज क्रांति गौड़ ने और इस एक रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन भारत का 9 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद।
1: In fact, Iqbal, India would be backing themselves because they have a very strong bowling lineup and they have got some good runs on the board. But of course, as we mentioned at the beginning of the commentary, that in a multi-team format, the net run rate is always a very, very crucial thing and this is a wonderful opportunity for India.
0: Agli ball ke saath round the wicket aa rahi hai Maya, agli gend aur is baar off stump ke bahar, is gend ko cut kiya. गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के बीच में, एक रन आसानी के साथ और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर। श्रीचरणी 4 पर और 3 पर क्रांति गौड़ बैटिंग कर रही हैं। माया का ये तीसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 29 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। पिछली 18 गेंदों से भारत ने कोई चौका या छक्का नहीं लगाया है, अपने आप में ये सारी कहानी आप समझ सकते हैं। अगली गेंद हाई फुल टॉस, बॉलर के सर के ऊपर से उछाला लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी गेंद, गेंद को रोक लिया गया। क्या नो बॉल का इशारा अंपायर का आएगा? ऐसा लग रहा है कि सिंगल तो भारत ने पूरा किया है लेकिन नो बॉल करार नहीं दिया गया, गेंद डिप कर रही थी और कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी खेला था बल्लेबाज ने, तो ऐसे में ये नो बॉल नहीं दिया गया, गेंद डिप कर रही
1: मार्जिनल
0: डिप कर रही थी गेंद। फिलहाल अंतिम गेंद के साथ माया तैयार है, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नंदिनी। ये गेंद नंदिनी के लिए और एक बार फिर से हाई फुल टॉस, इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर क्रैश किया लेकिन स्वीपर कवर ने दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया, सिर्फ एक रन आखिरी बॉल पर और इसी के साथ 19 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारत 146 9 विकेट के नुकसान पर। कम से कम अच्छी बात ये हो रही है पंकज कि भारत 20वें ओवर में प्रवेश कर रहा है।
1: Yes, and as OP Sharma, a statistician, gave us a number, highest score for India against Thailand is 148. Probably they should go ahead of that and there shouldn't be a need of rewriting some stats there. But important here is that the Thailand players are enjoying themselves. If you see them on the field, if you see them bowling, and that is really a very positive aspect about their team because they know they are up against a huge big team like India and they have got them on the back foot. So this is a very interesting match and also for India it's a good learning because if you have a bad day very early on in a tournament, that's always better, but Team India of course needs to get a big victory here as they begin their campaign in this particular Asia Cup. So the last over of this innings coming up, Sri Charani is on strike, Thipacha who has picked up a wicket is getting ready to bowl the last over, left arm round wicket.

वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है और हम हाजिर हैं फ्री हिट 20 लेकर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गौतम, तो खिदमत में हाजिर है। और व्हाट अ मैच, 159 पहली इनिंग की बात करें, और हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन करके चल रहे थे कि अब की बार कहीं ना कहीं 200 के पार जरूर। लेकिन मेरा साथ देने के लिए और चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं एक बार फिर से, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ हैं, एंड बहुत ही वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिस्टर राकेश थपलियाल हमारे साथ हैं, और मेरी को होस्ट मेघा भी हैं। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, शुरुआत की बात करें वो रन आउट और उसके बाद तो

0: बड़े रन आउट और 13वें ओवर के बाद कैसे थमी, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम पर थोड़ा सा विराम जरूर लग रहा था, लेकिन हाँ फाइनली एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है। लतिका जी
1: देखिए, मैंने पहले भी कहा शो में कि ये एशिया कप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से T20 क्रिकेट हम इतना बेहतर अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट में आप देखना चाहेंगे कि आपके बल्लेबाज गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और रही पावर प्ले की बात, अच्छा एक स्टार्ट मिला स्मृति मंदाना से और शेफाली वर्मा से जो उन्होंने हिट्स लगाए, लेकिन मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच की वजह से जो विकेट गवाया। तर या 180 के आसपास भी हो सकता था, वो कहीं ना कहीं 160 तक सिमट के रह गया।
0: शुरुआत काफी अच्छी दी गई शेफाली वर्मा की, अगर बात करें तो हाँ कंसिस्टेंट रही।
2: कैजुअल आपने लिया कि भाई फील्डर्स के ऊपर नहीं था, हम खेलते हैं वो ऐसे ही आपको चौंकाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, नहीं लग रहा था कि वो इस तरह की बेहतरीन थ्रो कर सकती होंगी, लेकिन वो उन्होंने की। वहां से उसके शेफाली वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन आप देखो कि आप किस तरह का जो शॉर्ट सिलेक्शन है, शेफाली वर्मा हरमनप्रीत कौर जिस तरह से इजी कैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह के जो शॉट्स खेले, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके के शॉट्स खेलेंगे, तो बहुत ही इजी। पहले जो बड़े शॉट्स लग रहे थे उसमें वो आउटफील्ड में कैच पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी फील्डर, ऐसा लग रहा था कि इनको कैच पकड़ने की कला में महारत नहीं है, लेकिन जब आपने इतने ईजी कैच दे दिए बॉलर के हाथ में दे दिया, दूसरे फील्डर्स को इतने ईजी कैच दे दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ये मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच जो रही, पहले 10 ओवर में आपने बना लिए 100 रन, तो उससे आपको लगा कि भाई हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत जबरदस्त थाईलैंड की टीम ने, और ये दिखाया उन्होंने कि क्यों वो इसके जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें क्यों वो चैंपियन बने, UAE जैसी टीम को फाइनल में उन्होंने हराया। उनके बॉलर्स बड़े नाम भले ही वैसे ना हो, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, स्पिनर्स ने खासतौर पे बड़े अच्छी गेंदबाजी की, लेग स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लेना और 2 बार एक एक ओवर में 2-2 विकेट, आपने क्रिकेट में कहा जाता है नेवर लूज 2 क्विक विकेट्स, वो फार्मूला जो है शायद इनके दिमाग से उतर गया हमारे खिलाड़ियों से, 2-2 विकेट गए। और जो नए खिलाड़ी हैं जिनको जैसे मौका, प्रतीका रावल ने थोड़ा अच्छा किया लेकिन आउट बड़े खराब ढंग से हुई, जो प्रेमा रावत हैं वो जिस तरीके से आपने पिच में आप आगे निकल आए, उस समय जरूरत नहीं थी उस चीज की, जब आपके विकेट्स गिर रहे हैं थोड़ा सा आपको रुक के चलना चाहिए। क्रिकेट में देखो रन बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स सबसे बड़ी चीज ये होती है, पारी को संवारने की कला अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो वही होगा जो आज यहाँ भारतीय टीम के साथ हुआ।
3: बिल्कुल, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेल ऑफ टू हाफ्स विद इंडिया स्कोरिंग 101 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली जस्ट मैनेजिंग 58 फॉर 7, ऑल्दो ऑब्वियसली क्रेडिट टू द टेल एंडर्स फॉर इंश्योरिंग लतिका कि भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की।
1: देखिए 20 ओवर बल्लेबाजी तो यहाँ पर करी, लेकिन मैं गेंदबाजी की तारीफ ये करूंगी कि उन्होंने एक ही लाइन एंड लेंथ में गेंदबाजी की है, भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट्स खेलने का। जरूर शुरुआत अच्छी रही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शेफाली और स्मृति से, लेकिन उसके बाद लगातार परेशान किया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया जिसका शिकार हरमन भी हुई गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को भी तकलीफ हुई रन बनाने में, और ये क्रेडिट जाता है इनकी गेंदबाजी पे, इनकी फील्डिंग एफर्ट्स पे, जिस तरह की कैचेस लिए, डायरेक्ट हिट्स लिए, तो एक दिखाता है कि ये टीम आपको इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दे रही है। तो अब ये कॉम्पिटिशन, अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी में आके ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं यूं की यूं बनी हुई हैं भारतीय टीम के लिए जिससे ये पार पाना चाहते होंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी एक और पार्ट बचा है इस मैच का, हम उसको देखेंगे वो किस तरीके से।
0: बिल्कुल, चिंता के विषय की आपने बात यहां पर की और कहा कि प्रेशर में बिखरे नहीं निखरे, एक मोड ऐसा भी आया था जब ऋचा को शायद वो स्टेज सेट करने का मौका मिला था, वहां पर भी गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है कि वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है ऐसे मोड।
2: बिल्कुल, आपने आते ही पहली गेंद से इस तरीके का वो जो शॉट खेला है वो उससे ऋचा घोष से वैसी उम्मीद नहीं आपको की जाती, आपने कौन

कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बॉलर्स का फील्डर्स का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम वो हमारी बल्लेबाजों ने किया है। वो तो 10 ओवर में पूरी तरह से डाउन आउट हो चुके थे। हमारा बड़ा स्कोर, मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि जो इनिंग खेले वो एंड तक लंबी इनिंग जाएगा, अगर एंड तक आपका शुरुआती बल्लेबाज टिकेंगे। अगर एंड के ओवर्स में लास्ट 5-6 ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज आएंगे तो आपको रन बनाने में दिक्कत आएगी, आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन शफाली ने जिस तरीके से इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, जितनी तारीफ हो उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुई उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसी उम्मीद मतलब नहीं की जाती थी कि इस तरीके से आउट होंगी। जो कप्तान हरमनप्रीत ने जो बैट शॉट खेला इस तरीके से, वैसी उम्मीद उनके साथ नहीं थी। लेकिन इन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, इन्होंने स्पिनर्स ने ज्यादा तेज फेंकने के बजाय बॉल को धीमा रखा, हवा में ज्यादा लटकाया, वेरिएशंस के साथ की, कोई कोई बॉल उन्होंने इस तरीके से की जो ज्यादा बाउंस उस पर पिच पे नहीं आया, तो उनको उस वेरिएशंस का फायदा मिला। और एक लाइन पे स्टिक करना, एक कम अनुभवी गेंदबाज जो होते हैं जिनको ज्यादा इंटरनेशनल का अनुभव नहीं होता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉलर्स के अंदर, खासतौर पर स्पिनर्स के अंदर, वो भी T20 में। बहुत हिम्मत इन गेंदबाजों ने दिखाई है कि जिस तरह की बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की। शुरू में ठीक है थोड़ा बहुत वेवर्ड रहे वो, उनके फास्ट बॉलर्स को भी शॉर्ट पिच गेंदें की, क्योंकि आजकल शॉर्ट पिच गेंदों पे ही लोग विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलर्स का तो एक फंडा ये बन चुका है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो।

का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था। मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये

0: शीर्षक गीत।
1: बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में

0: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।
1: हो हो हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान।

के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म, शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे

जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन

0: जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे प्यार की आग में। तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी। अरे फैशन

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी।

0: हमारी।
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

0: प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: घुस भर दिया अयो, घुस भर दिया मेरी चाहत में,

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले। आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें, प्यार करने वाले हार क्यों माने। वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: क्यों?
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया।
1: फिल्म जिद्दी।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी।
1: फिल्म अधिकार।
4: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
5: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: फिल्म अमानत।
6: रहने को घर दो।
1: फिल्म बीवी और मकान।
7: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

मुंबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और उस मुकाबले की भी कमेंट्री आप आकाशवाणी पर सुन सकेंगे। फिलहाल एक बार फिर से तैयार होती हुई गेंदबाज, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर काफ़ी ऊपर आ गई हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया, बीट हो गई बल्लेबाज इस मरतबा नपत और गेंद चली गई ऋचा घोष के दस्ताने में। तो इस साझेदारी ने रन कितने बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो टिकने की जो एक मंशा दिखाई है, पूरे 20 ओवर खेलने की जो मंशा दिखाई है, वो ज़रूर उसमें कामयाब नज़र आ रही हैं। नंदिनी इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने है नानापत, ये गेंद और इस बार नानापत ने इस गेंद को घूमकर मारा फाइन लेग क्षेत्र में, गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास रोक लिया गया और इस दरमियान दौड़ करके एक रन पूरा किया बल्लेबाज नानापत ने, और इस एक रन की मदद से नानापत पहुंच गई हैं 36 पर और थाईलैंड का स्कोर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी 15 रनों की हो गई है, 16 रनों की, इनफैक्ट 16 रनों की साझेदारी 36 गेंदों पर, पिछली 51 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई है, पिछली 51 गेंदों से कोई चौका या छक्का नहीं लगा है। इस ओवर की अगली गेंद फुल पिच डिलीवरी, रूम बनाकर खेला कवर्स पर, लेकिन गेंद को

0: फील्ड के अंदर रोक लिया गया, कोई रन नहीं। तो साफ तौर पर अब थाईलैंड के खेल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रणनीति से यही लग रहा है कि वो 160 चेज करने के लिए नहीं जा रही हैं, वो 20 ओवर खेलने के लिए जा रही हैं। और शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी सपोर्ट स्टाफ ने या कोई टेक्निकल स्टाफ ने उनको ज़रूर बताया होगा कि देखिए भारत के खिलाफ आपका उच्चतम स्कोर 74 है, उसको ज़रूर पार कर लीजिएगा। इस ओवर की अगली गेंद उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, इस बार आउट होने का खतरा, और इसी के साथ आउट। लाउमी आखिरकार अपने धैर्य को संभाल कर न रख पाई, धैर्य टूटा, एरियल रूट का इस्तेमाल, और इस बार लॉन्ग ऑन पर शेफाली वर्मा के हाथों में एक आसान कैच, और इसी के साथ ये सातवां विकेट जाता हुआ। कुल 38 गेंदों का सामना किया, यानी कि 6 ओवर और 2 गेंदें खेल करके ये जोड़ी टूटी है। इस बार ये धीमी गति की गेंद का, उंगलियों का इस्तेमाल, ऑलमोस्ट लेग कटर की तरह ये गेंद डाली थी नंदिनी शर्मा ने, और उसमें फंस गई लालच में, मारने की कोशिश हवा में, और कैच आउट हो गई। सो विकेट नंबर 7 का पतन हो गया है। ये 15वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रही हैं, और 3.5 ओवर में 18 रन दे करके उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। कोटे की अंतिम गेंद करने के लिए अब वो तैयार होंगी। नई बल्लेबाज सुनीता अब मैदान पर आई हैं। 15वां ओवर, अंतिम गेंद, और अभी भी अगर देखें तो 100 रन दूर है थाईलैंड, 100 रन दूर, 60 है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद सुनीता के लिए, और इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी, और इसी के साथ सुनीता आउट। नंदिनी शर्मा को लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक पर, लेकिन अब उनके पास ओवर ही नहीं है इस मैच में।
1: सो विल दैट हैपन इन द नेक्स्ट मैच? Quick one there, the ball just cutting away, and Sunida had no chance whatsoever. She just poked at it, outside it, and good catch in the end there by Richa. And back-to-back wickets for Nandini. 15 overs, Thailand 60 for the loss of 8 wickets now. This is probably a quick finish here, and India doing pretty well, Iqbal. And Nandini, in fact, got that back-of-the-hand ball in the last penultimate delivery, there was a wicket, and this was a quick leg cutter. So she's really using all her variations, and she has got a couple of quick wickets for India.
0: तो भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों को विकेट मिला है, प्रेमा रावत को छोड़ करके। प्रेमा रावत ने कोटा भी हालांकि पूरा कर लिया है अपना, 4 ओवर में 1 मिडन 11 रन, कोई विकेट नहीं। क्रांति गौड़ के पास 1 ओवर है, 1 ओवर श्री चरणी के पास है, और दीप्ति शर्मा के पास 3 ओवर्स बचे हुए हैं। तो साफ तौर पर एक छोर से अब दीप्ति शर्मा ही नजर आएंगी, अगला ओवर लेकर के दीप्ति शर्मा आएंगी। फिलहाल ननापत 36 रन बना करके अभी भी मैदान पर मोर्चा संभाले हुए हैं। नंबर 3 पर आई थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन कोई साथी है कि टिकने का नाम नहीं ले रहा।
1: Kranti Gaur is back into the attack and Nanapat tries to go for that big heave. They go for the run, direct hit, and Smriti Mandhana gets a run out there. So, but the problem here is that Onicha and Nanapat were there in exactly at the center of the pitch. The umpire will have to figure out who is the one who has to go back, because the throw was at the non-striker's end. Did Onicha, who was at the non-striker's end, took off and crossed over, is what both the umpires will have to look at for. In fact, Nanapat tried to go for a big shot. The ball went towards mid-on at Smriti Mandhana's position, and she had a direct hit. There was a bit of a confusion between both the batters, and a direct hit has does the needful. Now the third umpire, of course, need not give the decision whether it's out or not. Yes, it's a definite out, but who has to walk back is going to be the big question. Cricket is a funny game, a lot of rules, regulations, everything has to be taken into consideration, and I guess Nanapat crossed over a bit, that's what looks prima facie, and the umpire now looking at the technicalities, discussing amongst themselves, and the third umpire, as the replay will make it much more clearer. And Onicha didn't want a run, Nanapat started off and then decided not to take the run, and both the batters were stranded in between. Smriti Mandhana had a very simple throw

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: झुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे को

0: नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ, ಸಮಯ 11:12. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಿಲಯದ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:53 ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂತೋಷಿ ಹೇಳುವ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.